0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफ प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: झुमका,
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
2: बिग टाइम चेक
3: 7:09।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ. It's a good morning 7th September की सुबह. And होते हैं यार कुछ लोग early morning person नहीं होते हैं यार. ऊपर से मंडे है आज. मंडे blues को ध्यान में रखा जाए, because कोई उनसे पूछ ले good morning कर ले, all they will reply is
3: good morning बेटा भाई.
4: हाँ भाई good morning. उत्साह है सुबह सुबह.
2: I swear, जेठालाल vibes से बन जाती है मंडे ब्लूज. कोई भी आपको गुड मॉर्निंग बोलते हैं. Having said that, मंडे ब्लूज एक्स्ट्रा हो जाते हैं जब आपका वीकेंड टॉप नॉच निकला हो. I had the best वीकेंड वॉचिंग दिस एब्सोल्यूट क्यूटी फिल्म कॉल्ड ओ माई डॉग. हम सबने साथ में इकट्ठे देखी थी, सैटरडे को स्क्रीनिंग थी. एंड अगर आपका ये वीक आपको लग रहा है थोड़ा हार्ड जाने वाला है, get yourself some time to watch this film and आपको इससे लगेगा जोर से ना आपको किसी ने हक कर लिया. Having said that, AI की बात करने वाले हैं हम, AI robots के बारे में. And there are a set of people, netizens ही कहते हैं उनको, जो बड़े यार negative role कहते हैं, से negative बोलते रहते हैं AI के बारे में, लेकिन अंदर से वो यही feel करते हैं. मौका नहीं छोड़ते हैं एआई को यूज करे बिना, एक मौका नहीं. यू टेल मी, कॉल करके 800-1062 पर आप दिन में एआई कोई भी टूल हो, चैट जीपीटी हो, कुछ लिखने के लिए हो, ईमेल हो, कितनी बार यूज करते हो, करते हो नहीं करते हो. 800-1062 इज द नंबर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 39 डिग्रीज आउट देयर विद 44% ह्यूमिडिटी, लेकिन ऑनेस्टली 39 फील नहीं हो रहा है। फील तो मुझे काफ़ी कम हो रहा है। मे बी आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन और इतनी जल्दी उड़ गई हूँ, तो मुझे अच्छे ही लग रहा है मौसम। 39 डिग्रीज तो महसूस नहीं हो रहा था।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है Sid on the Big Breakfast, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae. The Big Breakfast on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं अवनी आपके साथ. गुड मॉर्निंग, 7 सितंबर इट इज. एंड बात कर रहे थे हम रोबोट्स के बारे में, एआई के बारे में. एंड दुबई पुलिस इज टेकिंग इट्स एआई पुश अ स्टेप फर्दर, डिप्लॉइंग 36 सॉफ्टवेयर रोबोट्स टू हैंडल रिपीटेटिव टास्क, व्हिच इज आई मीन ऑफ कोर्स ओके एंड वेरी यूजफुल ऑनेस्टली. ऑफ कोर्स एम यही है कि रूटीन वर्कलोड जो है वो रिड्यूस हो जाए, स्टाफ थोड़ा और फ्री अप हो जाए ताकि वो और स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज कर सके. बट पुलिस से दिल ऑल्सो एक्सपैंड एआई यूज अक्रॉस ऑपरेशंस टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्स टाइम. And this is the best use of AI, okay? Humans handling AI, humans handling robots is the best way. And recently, मुझे रोबोट्स की बात पढ़ के मुझे याद आया कि recent latent वाले episode में ना, समय रैना शो, उसमें एक contestant आए थे and वो एक robot थे. Can you imagine that? First ever contestant on latent who was a robot. Of course, वो भी, उसको भी एक human ही चला रहा था, लेकिन what a delightful performance to watch. Lekin, jo log bolte ke AI will take over humans. Wait, hold on. पर एक रोड है यार जो इतनी मुश्किल नहीं है, वो है स्कूल जाने वाली रोड. नाउ गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव. रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 109 दिरहम पर मंथ, फ्लैट रेट फॉर द ईयर, जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न्स. School ready with a self drive. Coming up next is Pankaj song by Asis Kaur. Keep it locked to Big 106.2. Good morning.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: भी प्राक विशाल दरलानी का ट्रैक सॉन्ग का नाम था हीरा आसमानी।
1: द बिग ब्रेकफास्ट ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: वो एक स्पेशलाइज्ड काम कर सकते हैं, जो बाकी रिपेटेटिव टास्क हैं वो रोबोट्स कर सकते हैं, हम उनसे करवा सकते हैं द बेस्ट यूज ऑफ एआई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं भाई एआई का यूज? हम पूछ रहे हैं कि भाई हमें ये ईमेल रीफ्रेम करके दे। और बता रही हूँ भाई, नो फिल्टर बिटवीन यू एंड मी। हम ईमेल रीफ्रेम करवाते हैं, हमें किसी को सॉरी बोलना हो, हम अच्छी खासी सॉरी फील कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स में क्या डालेंगे अगला बंदा मान जाए यार, उसको सच में दिखे कि वी आर यू नो जेन्युइनली सॉरी, वो तक एआई से करवा रहे हैं यार। चावल जल जाते हैं मेरे किचन में तो मैं एआई से पूछती हूँ करना क्या है। और ये जवानी भाई फुल ऑन आफत मोड विद एआई।
1: जवानी तेरी
0: रिकॉमी 800-1062 पे बताओ मुझे कि आप अपने पूरे दिन में कितना एआई यूज करते हो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। 800-1062 is the number. Until then, keep it locked to Big 106.2. Good morning, off a track by Tanish Bakshi coming your way.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 8:09। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Authentic, original, and better than our right.

0: Google reviews with a 4.8 star rating built in the UAE, trusted across the UAE insurance market.
1: Seventh of September. Good morning, and latest weekend par kafi updates hue. There's a new show coming up, The Big Boss. Of course, Big Boss नया show नहीं है, लेकिन Big Boss का season 20 आ चुका है. Contestants की list आ चुकी है. Salman Khan again is the host. लेकिन ना netizens के list से दो opinions हो चुके हैं. Like 50-50% चल रहा है कि यार इस बार उनको मजा नहीं आ रहा है. Not just के Big Boss show ऐसा है या नहीं है. They're like के जो contestants आए हैं ना, वो हमें पता ही नहीं है कौन है. अब भाई जो देखते हैं बिग बॉस वो इस वजह से परेशान है, जो बिग बॉस नहीं देखते हैं वो उसके कॉन्सेप्ट से ही परेशान है कि किसी के घर में क्या चल रहा है, हमको क्यों देखना है यार. एक सेकेंड, क्या हमेशा ओपिनियन होना जरूरी है?
2: मैं परेशान,
1: बट टू अ शो लाइक बिग बॉस उसके लिए इतना इतने बड़े यू नो ओपिनियंस आ रहे हैं. आई एम एक्चुअली शॉक्ड अबाउट दैट. बट हैविंग सेड दैट, इस बदहजमी से मैं बच नहीं पा रही, लेकिन आप बच सकते हो इफ यू वांट टू गेट इफेक्टिव रिलीफ नेचुरली विद डाबर पुदीन हरा. इफ यू एवर फील इनडाइजेशन, इट्स जस्ट वन टाइनी पर्ल पैक्ड विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल विच गिव्स अ स्टमक इंस्टेंट सूदिंग रिलीफ. इट्स योर पॉकेट साइज कंपेनियन फॉर क्विक नेचुरल रिलीफ एनी टाइम एनी वेयर. कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन. इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन नून मिनट्स. डाबर पुदीन हरा, इट्स द नेचुरल वे for to stay indigestion free and keep it locked to Big 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: B106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae. The Big Breakfast on B106.2, the beat of Bollywood.
1: गुड मॉर्निंग 7th of September, एंड कभी भी किसी को आप बोलते देख लो ना ये मिर्जापुर के डायलॉग्स, करीन भैया को कौन रोकेगा, यू ऑलरेडी नो दे बिलोंग टू दैट वर्ल्ड. ओके, व्हाट स्टार्टेड एज एन ओटीटी क्राइम थ्रिलर 2018 में बेंट ऑन टू बिकम इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रीमिंग फ्रेंचाइजेस, एंड 3 सीजन के बाद कालीन भैया, गुड्डू पंडित, मुन्ना भाई अपना पॉप कल्चर का पैड बन चुके हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. एंड हैज इंटरेस्टिंग जंप. अब वो टीवी स्क्रीन से उठ के बिग स्क्रीन पर आ चुके हैं. द रीसेंट वीकेंड मिर्जापुर द मूवी गॉट रिलीज, इतना प्यार मिला है इन सब कैरेक्टर्स को. एंड जस्ट नॉट दैट, ये जो पुराने वाले कैरेक्टर्स थे, ब्रिंगिंग बैक पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी, नए फेसेस भी इंक्लूड हो चुके थे, अ फेवरेट रवि किशन, जितेंद्र कुमार. बट हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, ओके, ये सीजन 4 नहीं है मूवी का या फिर सीरीज का. द फिल्म गोज बैक इन टू द टाइम लाइन ऑफ सीजन 1, जहां पर एक अनटोल्ड चैप्टर एक्सप्लोर होता है बिटवीन एपिसोड 6 and 7. ओके फाइन, आई हर्ड इट, 6, 7, आई हर्ड इट ऑलरेडी. सो यस, कैरेक्टर्स हू स्टोरीज वी ऑलरेडी नो, मुन्ना भाई आर बैक, बहुत प्यार मिल रहा है. एंड अगर आपको भी फिल्म देखनी है फ्री में, ऑफकोर्स हम दिखा रहे हैं. कहाँ जाना है आपको, इंस्टाग्राम हैंडल 106.2 बिग एफ एम के पेज पर, वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है. दिस वीकेंड यू कैन एक्चुअली वॉच मिर्जापुर इन थिएटर्स. कैसे और कहाँ, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा बिग एफ एम के पेज को, 106.2 बिग एफ एम. एंड द नेक्स्ट ट्रैक कमिंग अप फ्रॉम द सेम फिल्म, फिल्म बोलूँ सीरीज बोलूँ, मिर्जापुर, एब्सोल्यूट स्टनिंग ट्रैक, बहुत ही सुंदर, इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंड भी कर रहा है, सच अ सूदिंग ट्रैक. एंड विद दैट इट्स अ गुड मॉर्निंग.

0: The beat of Bollywood. ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
2: InsuranceMarket.ie. The worst part of a small accident isn't the dent, it's what can happen after. But with us, you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from InsuranceMarket.ie.
3: The Big Breakfast, brought to you by Dabur Pudin Hara. Stay indigestion free the natural way with Dabur Pudin Hara. Big 106.2. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: Traffic is heavy on E3 11 Emirates Road, particularly around Sharjah Industrial Area 6 and Safe Zone. There are also multiple incidents causing delays. जहाँ पर आपको देखना पड़ेगा Sheikh Zayed Road near Zabil Park, Sheikh Mohammed bin Zayed Road around Russell Khor Industrial Area 3. There's another crash affecting E3 11 around Al Ghaziz Industrial Area 5. Al Ittihad Street near Al Bamzar पर भी आपको delays मिलेंगे. अगर कहीं और फंसे हो traffic में, do let me know. Call करके 800-106-2 पर.
3: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: उदित नारायण का ट्रैक सॉन्ग का नाम था मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। दिस इज अ न्यू वर्जन, लेकिन मेजरली जो है ना मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी ये रोड्स पे यूज होता है। मतलब कौन बेटर चला रहा है, कौन कौन सी बेटर चला रहा है।
1: The Big Breakfast on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ 7th of September. Good morning. And of course यार हमें अच्छी गाड़ी चाहिए होती है, किसको नहीं चाहिए मुझे बताओ। But people are actually crazy for cars, you know. There's a vibe and there should always be a vibe. Now you can drive home your dream SUV this summer with Jator's unbeatable offers, VAT on us or 0% interest, free service package included, 1 million kilometer warranty, EMI starting from just 966 dirhams per month. So basically, just visit Jator showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jator UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply. Keep it locked to Big 106.2.
2: Yeah. Jab chahe

जो दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती, गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी, आई डोंट नीड नो ज़ूम, ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: बेबी दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। आम हासला ए वन लाइफ स्टाइल ए वन आई मुझे न सिखाओ घंटे पे फेम एक ही बस एम जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिटरो की छातियों पे रख दीवे बाल के टोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देहरादून दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम।
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 9:06। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: स्कूल्स स्टार्टिंग सून एंड वी नीड अ कार
4: एंड बुक्स, यूनिफॉर्म्स, एवरीथिंग।
3: डोंट वरी, आई फाउंड द बेस्ट बैक टू स्कूल रेंट अ कार ऑफर ऑन selfdrive.ae। सेल्फ ड्राइव कार्स रेंटिंग फ्रॉम जस्ट 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on

0: early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Oh My Dog, a heartwarming family entertainer that won hearts in India and is now coming to cinemas across the UAE. Starring Pankaj Tripathi, Pawan Malhotra, Mahi Rai and 250 canine stars. Written, directed and produced by Amit Rai. Oh My Dog, releasing 4th September at cinemas across the UAE. Distributed by Fars Film. Book your tickets now.
1: One Big Ticket brings you many chances to win.
2: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
1: 5 consolation prizes from 100,000 dirhams all the way up to 1 million dirhams.
2: 3 chances to spin for up to 1 million dirhams with Big Spin.
1: And 4 weekly electronic draw winners of 25,000 dirhams each.
2: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: इट्स क्वाइट विंडी आउट देयर, इसलिए 39 डिग्रीज होने के बावजूद आपको इतना सनी नहीं लग रहा है। इट्स गोना बी सनियर विद 42 डिग्रीज।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me. बिग 106.2। बिग 106.2। सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae।

0: एक आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
1: Schools starting soon and we need a car.
2: And books, uniforms, everything.
1: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
1: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
4: Step into a breathtaking experience where the world disappears and music transforms into a roaring universe around you. Zikr presents Akansha Grover Ki Mehfil, a historic takeover inside Toda's monumental 360-degree digital projection theatre on 13th of September. This is not just a performance, it's a pure sensory explosion. To witness the magic, book your tickets now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
5: Recalculating route to Sharaf DG for back to school shopping.
6: Parents, you heard that right. Win up to 5,000 dirhams back on laptops and tablets. Get gifts worth 500 dirhams and enjoy an extra 5% student and teacher discount. And that's not all. Save up to 200 dirhams with DIB, Al Hilal Bank, and HSBC. Power up for AI amplified learning. Shop in store or online. DNC Supply.
0: The Big Mix. Miss kiya gaya?
7: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
8: हेलो, हाय, तंजील बात कर रहा हूँ। आप कैसी हैं?
9: मैं ठीक हूँ तंजील। आपने खाना खा लिया?
8: बस रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा हूँ, आपको कॉल लगा दिया उससे पहले।
9: ओह माय गॉड, मतलब जो भी डिश आज जीतेगी आप वही खाओगे अंदर जाके, है ना?
8: बिल्कुल बिल्कुल, माइंड सेट करके आया हूँ आज।
9: ठीक है, तो व्हाट्स योर फेवरेट डिश?
8: दाल चावल।
9: ओके, दाल चावल या छोले चावल?
8: दाल चावल।
9: दाल चावल या राजमा चावल?
8: दाल चावल।
9: दाल चावल या पास्ता?
8: दाल चावल।
9: दाल चावल या आलू मेथी की सब्जी?
8: दाल चावल।
9: दाल चावल या आलू का पराठा?
8: आलू का पराठा।
9: ओके, फाइनली कुछ तो चेंज हुआ। आलू का पराठा या फिर आलू मेथी का पराठा?
8: आलू का पराठा।
9: आलू का पराठा या कढ़ाई पनीर?
8: कढ़ाई पनीर।
9: कढ़ाई पनीर या फिर गार्लिक नान के साथ दाल मखनी?
8: गार्लिक नान के साथ दाल मखनी।
9: ओके, दाल मखनी या गोलगप्पा चाट?
8: दाल मखनी।
9: दाल मखनी। तो बेसिकली आज दाल मखनी ही ऑर्डर करने वाले हैं।
8: बिल्कुल बिल्कुल।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
9: Heavy congestions on E11 and E311 between the two Emirates, Sharjah and Dubai. Inside Dubai, आपको ध्यान रखना पड़ेगा Sheikh Zayed Road पर, Al Khail Road that approaches towards downtown and Business Bay. अगर कहीं और फंसे हो ट्रैफिक में, do let me know. Call करके 800-1062 पर.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
10: तुम बीमार हो?
7: No.
10: तो लेती क्यों?
7: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पर उनको कंट्रोल करते हैं।
10: क्या

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ 7th of September. Good morning and मैंने ब्लू सटाने के लिए मैं आ चुकी हूँ. मैं नहीं, Big Check Into Germany आ चुका है and this time I'm gonna play with you Bollywood Beach to Germany. अगर आपको मेरे साथ ये गेम खेलनी है, करना आपको क्या है, WhatsApp नंबर नोट कर लो 0543091062. यहाँ पर आपको मैसेज करना है Big Check In space your name and यहाँ पर भेज दो. That's it. 0543091062. मैं आपको कॉल. वी गोना प्ले बॉलीवुड बीच टू जर्मनी. लेट्स सी आपको ये वाले गाने पता है या नहीं पता. आई एम गोना प्ले स्टार्टिंग का म्यूजिक ऑफ अ वेरी फेमस सॉन्ग. आपको वो सॉन्ग गेस करना होगा. व्हाट्सएप नंबर लास्ट बार रिपीट कर देती हूँ 0543091062. इट्स टाइम फॉर बिग चेक इन टू जर्मनी.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं अवनी आपके साथ एंड हमने आज कॉल किया है अंकिता को. हाय अंकिता.
2: हाय, गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग अंकिता, आप क्या करते हो?
2: आई एम अ जनरेशन शेपर. आई एम अ हाउसवाइफ.
1: बहुत अवेयर हो यार, वेरी नाइस. जर्मनी के बारे में कितना अवेयर हो?
2: जर्मनी, आई हैव बीन टू जर्मनी आई थिंक लाइक ट्वाइस.
1: ओके, ऑलरेडी?
2: या
1: फिर भी आपको जाना है, तीसरी बार जाना है आपको?
2: It is extremely beautiful and jitna ghumo utna kam hai.
1: And ek cheez aap bhul gaye, this is big check into Germany, so experience yeah. wo any which way is different hone wala
2: hai. Yeah, true.
1: Okay, we're gonna play with you Bollywood beach to Germany. Okay, मैं आपको okay. एक सॉन्ग का स्टार्टिंग का म्यूजिक सुनाऊंगी, आपको गेस करना है वो सॉन्ग कौन सा. आर यू रेडी?
2: ओके ओके.
1: कितने सॉन्ग सुनते हो वैसे आप?
2: एफएम सुनते हो, सो
1: वी विल लिसनर. लेट्स सी आपको ये गाना पता है या नहीं पता
2: yeah.
1: है.
2: sure. काला चश्मा.
1: अभी तो बेचारा 5-10 सेकंड का भी म्यूजिक नहीं बजा रहा. वाओ, दैट्स अमेजिंग. Truly a generational shaper. Do you have kids?
2: Yeah, two boys.
1: Two boys. Oh ho. Clear.
2: तभी FM की बहुत ज़रूरत है.
1: Okay, thank you so much. Your name gets shortlisted for today. Bollywood beats to Germany में.
2: Thank you so much.
1: Thank you so much, Ankita. This is a big check-in to Germany. अगर आपको भी चलना है हमारे साथ Germany, all you have to do is type big check-in space your name and send it to this WhatsApp number 0543091062. हम करेंगे आपको कॉल और खेलेंगे एक बढ़िया सा गेम and let's see आपका नाम shortlist होता है नहीं होता है. अगर हो जाता है वो जाएगा आगे draw में, then you'll come with us to big check-in to Germany.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 10:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Breakfast on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं अवनी आपके साथ एंड वी आर बैक टू पवेलियन, बैक टू टी. एक्चुअली आजकल की टी गॉसिप होती है ना, 3 महीने अब यही चलने वाला है. बिग बॉस की बात कर रही हूँ, सीजन 20 हो चुका है शुरू. दे हैव गॉट 16 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स अगेन होस्टेड बाय सलमान खान. कंटेस्टेंट्स जो हैं मैरी कॉम है माही विज, कनिका मान, अम्रपाली दुबे, आसिफ खान, ईशा रिखी, तन्मय सिंह, अमन गांधी, अरिश्वा खान और बहुत सारे लोग. लेकिन नेटिजन्स का कहना ये है कि यार इस बार जो सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स हैं ना, हमें नहीं पता है वो कौन है. आपको पता है वो कौन है? मतलब जेन्युइनली देयर आस्किंग दैट. आई डोंट नो इनको पसंद आता है नहीं आता है, लेकिन वन थिंग्स फॉर श्योर, ये पूरे 3 महीने यही रहने वाले हैं. Big Boss season 20 joining, lekin we are not just back to Big Boss, we are also back to school, and this is Ford Back to School 2026 campaign, jo ki 27th of September tak chal raha hai. What is it about? They say buy now and pay in 2027. Down payment on Altair Motors, 1 year free insurance, 5 years 100,000 kilometer service and warranty. Offers available on selected Ford models. A great opportunity for families to get ready for the new school year with attractive Ford offers. We are also back to school now. Keep it locked to Big 106.2.

0: Autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor Danube Properties. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany, only on Big 106.2.
1: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
2: Listen to her every day.
3: Mugambo, खुश हुआ।
4: तंजील, मुझे बहुत अच्छे से याद है आपने कुछ महीनों पहले मुझे फोन किया था एंड आपकी सिस्टर आई थिंक वाज लुकिंग फॉर अ गर्ल, आप शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, तो उस डिपार्टमेंट का क्या हाल चल रहा है, हुई नहीं हुई, मिली नहीं मिली?
5: अभी तक नहीं मिली, बस अभी तक सर्चिंग हुई रही है।
4: ओहो, तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं?
5: नहीं, बिल्कुल नहीं है, जीरो एक्सपेक्टेशन है।
4: बस लड़की हो, जिंदा हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है ना। फिलहाल आप तंजील आए हैं तो हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर। 3 चीजें जो आप दही से बना सकते हैं।
5: दही से खीर बना सकते हैं।
4: दही से खीर बना सकते हैं, वाह वाह वाह। ये जो आपने रायता फैलाया है पहले जवाब में, मजा आ गया है तंजील। 3 हनीमून डेस्टिनेशंस जहां आप जाना चाहेंगे।
5: स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी।
4: ये देखो जवाब आया ना,
5: इसका जवाब माइंड में रहता है
4: हमेशा 24/7, आपके माइंड में यही रहता है सर, और इसलिए आपको ध्यान नहीं है, आप दही से खीर बना रहे हो।
6: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Traffic is building up, especially on Dubai Sharjah route. E311 is seeing heavy delays and congestion around Sharjah industrial area and safe zone. Agar aap Sheikh Zayed Road par hain, near Zubil Park and Sheikh Mohammed bin Zayed Road par hain, you have to allow extra time because there are incidents. If you're heading towards Sharjah or agar aap Sharjah se aa rahe ho, you still have to allow extra time this morning. It's a morning rush. Agar kahin aur phanse ho traffic mein, do let me know. Call karke 800-1062 par.
6: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: Hollywood. You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800 Alfred 24/7.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
2: E311 पर आपको काफी हैवी कंजेशन मिलेगा, पर्टिकुलरली अगर आप शारजा वाली साइड से आ रहे हैं. यहाँ पर देयर इज आल्सो स्लो मूविंग ट्रैफिक अराउंड अल खान सहारा सेंटर एंड अल ममजार. इनसाइड दुबई देयर इज एन इंसिडेंट ऑन शेख जायद रोड नियर जबील पार्क व्हिच विल कॉज यू एडिशनल डिलेज. तो एक्स्ट्रा टाइम साथ में लेकर चलो, एंड कहीं और फंसे हो ट्रैफिक में डू लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर.
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: जादू है ना यार, मॉर्निंग में भी मैं, आफ्टरनून में भी मैं।
1: The Big Breakfast on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 में मैं हूँ अवनी आपके साथ। This song of the hour was brought to you by insurancemarket.ae with 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating, built in UAE, trusted across UAE. Every review is a story of trust and every policy is a promise kept. insurancemarket.ae. फिलहाल हो रहा है मेरे जाने का टाइम, पर आपको पता है यार मैं हमेशा रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन। All you have to do is give us a follow on 106.2 Big FM Insta handle. मुझे भी फॉलो कर सकते हो अवनी यार के पेज पर, AVNI YAAR। अभी जा रही हूँ लेकिन एक बजे फिर से आ जाऊंगी हाउ पी ऐश करने आपके साथ विद द बिग चेक इन टू जर्मनी। सो कीप इट लॉक टू बिग 106.2।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: डाइजेस्टन कूल टिप्स विद डाबर पुदीन हरा।
3: बाहर की गर्मी को एसी कूल करता है और हैवी नील्स के बाद पेट को कंफर्ट देता है डाबर पुदीन हरा, योर अंदर का एसी विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर सूदिंग रिलीफ।
2: डाबर पुदीन हरा, स्टे इंडिजेशन फ्री द नेचुरल वे। अवेलेबल ऑन नून मिनट्स। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन।
1: बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Step into a breathtaking experience where the world disappears and music transforms into a roaring universe around you. Zikr presents Akansha Grover Ki Mehfil, a historic takeover inside Toda's monumental 360-degree digital projection theatre on 13th of September. This is not just a performance. It's a pure sensory explosion. To witness the magic, book your tickets now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
2: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची केसी कहाँ मिलेगा बताना।
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
2: अलरास बोले तो
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
4: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
5: दो या चार?
4: चार।
5: कब तक वापस लौटेगा?
4: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
5: चार या
4: पाँच?
6: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 p.m. and Sunday 10 a.m. to 12 p.m. only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
2: हेलो, हाय, तंजील बात कर रहा हूँ। आप कैसी हैं?
3: मैं ठीक हूँ तंजील, आपने खाना खा लिया?
2: बस रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा हूँ, आपको कॉल लगा दिया उससे पहले।
3: मतलब जो भी डिश आज जीतेगी आप वही खाओगे अंदर जाके, है ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल, माइंड सेट करके आया हूँ आज।
3: ठीक है, तो व्हाट्स योर फेवरेट डिश?
2: दाल चावल।
3: ओके, दाल चावल या छोले चावल?
2: दाल चावल।
3: दाल चावल या राजमा चावल?
2: दाल चावल।
3: दाल चावल या पास्ता?
2: दाल चावल।
3: दाल चावल या आलू मेथी की सब्जी?
2: दाल चावल।
3: दाल चावल या आलू का पराठा?
2: आलू का पराठा।
3: ओके, फाइनली कुछ तो चेंज हुआ। आलू का पराठा या फिर आलू मेथी का पराठा?
2: आलू का पराठा।
3: आलू का पराठा या कढ़ाई पनीर?
2: कढ़ाई पनीर।
3: कढ़ाई पनीर या फिर गार्लिक नान के साथ दाल मखनी?
2: गार्लिक नान के साथ दाल मखनी।
3: ओके, दाल मखनी या गोलगप्पा चाट?
2: दाल मखनी।
3: दाल मखनी। तो बेसिकली आज दाल मखनी ही ऑर्डर करने वाले हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: पास्ट 1 PM लंच आवर टाइम हो चुका है। क्या लाइव खाने में बताओ मुझे 800-1062 पे कॉल करके।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 में मैं हूँ अवनी आपके साथ once again. मुझे पता था यार आप यही कहने वाले हो, इसलिए मैं वापस से आ गई मॉर्निंग के बाद. There's one more thing जिसको मैं बोलती हूँ यार मत जाओ, प्लीज दूर मत जाओ, वो है एक नई फिल्म and this one is a shock releasing on 24th of September. Starring our favorite Anoop Soni, film ka naam hai Shock, usme Anoop Soni hone wale hain. To imagine, ek ye dialogue banega ke nahi banega, saavdhan rahe, satark rahe. Well, having said that, the cast is amazing. Parineeti Chopra ki ye film hai and Netflix par mil jayegi aapko 24th of September ko. Just not that, Jennifer Winget bhi hai isme, Soni Razdane bhi hai, and kyunki ye bhi ek Shock Trust No One naam hai is film ka, to crime thriller hone wali hai. Who is the culprit? 24th of September ko pata lagega, tab tak तो यार बनता है.
3: तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा.
2: टॉप नॉच ट्रैक्स कमिंग योर वे आफ्टर दिस वन. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड बहुत ही अमेजिंग बॉलीवुड ट्रिविया मुझे समझ में लगा है, पता लगा है। दिस सॉन्ग फ्रॉम दिल्ली 6, मोहित चौहान, ए आर रहमान का ये ट्रैक अगर आपको याद

0: मजाक करी।
1: अब तो ये ट्रैक यार इंस्टाग्राम पर स्टोरीज पर ही सुनाई देता, बट इमेजिन व्हाट अ टाइमलेस ट्रैक। लेकिन क्या आपको पता है ये ट्रैक जो है डेली सिक्स के लिए नहीं बना था, देयर वाज दिस अनदर फिल्म जो फराह खान ने बताया है ये उस फिल्म के लिए बना था। बट अब वो फिल्म कौन सी थी? आ रही है, बता रही हूँ कौन सी फिल्म थी। तब तक यू कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: क्या तूने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: पीने की प्यास
1: है। एक एक ट्रैक सॉन्ग का नाम था बंदा ये बिंदास है, लेकिन बंदा बिंदास ए आर रहमान की बात हो रही है यार। यहाँ पर मसक अली सॉन्ग जिन्होंने बनाया था, दैट वाज नॉट फॉर द फिल्म डेली सिक्स, दैट वाज एक्चुअली फॉर अ डिफरेंट फिल्म।
2: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड मैं नहीं कह रही हूँ यार, फराह खान ने रिवील किया है फॉर हर फिल्म ओम शांति ओम मसक अली ट्रैक उस फिल्म के लिए कंपोज हुआ था बिफोर इट वाज रिप्लेस्ड इन दिल्ली सिक्स। एंड नाउ इमेजिन अगर ये नहीं, ये वाले गाने की जगह मसक अली यूज हुआ होता तो

बेसिकली ओम शांति ओम की जो एल्बम है ना वो दिल को पतंग बनाती है. डेफिनेटली ओम शांति ओम हैज बीन माय फेवरेट फेवरेट फेवरेट फिल्म. विल आई चूज ओम शांति ओम अबव दिल्ली सिक्स? I guess yes. Any day. What about you? What would you choose? Delhi 6 or Om Shanti Om? Batao mujhe 054-309-1062. But until then, keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:07
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज योर टाइम योर चांस टू गो टू जर्मनी विद बिग चेक इन टू जर्मनी. करना क्या है आपको, टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू दिस व्हाट्सएप नंबर 0543091062. एंड जब भी हम वेकेशन पर जाते हैं ना, अपनी फोटोज क्लिक करवाते हैं, इंस्टाग्राम पर डालनी होती है, तो हमें ना स्टोरी के लिए कोई म्यूजिक नहीं मिलता है. एंड दैट इज वाई फॉर दिस वीक कॉन्टेस्ट हम खेलने वाले हैं आपके साथ बॉलीवुड बीट्स टू जर्मनी. स्टार्टिंग का कुछ म्यूजिक सुनाएंगे एंड आपको वो वाला सॉन्ग गेस करना है. That's it. And ये गेम खेलने के लिए करना क्या है आपको, मैसेज करना है बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू दिस व्हाट्सएप नंबर 0543091062.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor Danube Properties. Title sponsor Papa John's. Associate sponsors Ford and Sharaf DG. Travel partner AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: Step into a breathtaking experience where the world disappears and music transforms into a roaring universe around you. Zikr presents Akansha Grover Ki Mehfil, a historic takeover inside Toda's monumental 360-degree digital projection theatre on 13th of September. This is not just a performance, it's a pure sensory explosion. To witness the magic, book your tickets now on Platinum List. Event made large by Big 106.2. The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae.
1: InsuranceMarket.ae.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: द वेदर इज स्टिल विंडी, लेकिन फिर भी 37 डिग्रीज है बाहर, बट इट फील्स एक्चुअली लाइक 45.
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट alras.me. बिग 106.2. Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
4: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
0: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni. On Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं अवनी आपके साथ एंड आज कॉल किया है मैंने समीरा को. हाय समीरा.
2: हाय अवनी, हाउ आर यू?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और कितनी बार मैसेज किया यार आपने?
2: बस मैं यही काम कर रही थी.
1: बहुत बढ़िया काम पकड़ा है. वैसे आप जेन्युइनली क्या काम करते हैं आप?
2: जेन्युइनली मैं सेल्स का काम करती हूँ फॉर होटल.
1: फॉलो अप, सी फॉलो अप इज सो इम्पोर्टेंट.
2: दिस वर्क्स एक्चुअली.
1: ऑफ कोर्स इट डज. एंड आपको नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा. ओके, वी गोना प्ले बॉलीवुड बीट्स टू जर्मनी विद यू. दिस इज योर चांस. बिग चेक इन टू जर्मनी. क्या आप एक्साइटेड हो?
2: सुपर सुपर, इसीलिए तो सारा दिन से लगी हुई थी.
1: ओके, जर्मनी के बारे में क्या क्या पढ़ाई करी है फिर आपने? कुछ किया, पढ़ाई की होगी?
2: बस यही ऑफिस के थ्रू पढ़ाई की थी, बिकॉज वी हैव कपल ऑफ रोड शोज हैपनिंग देयर. तो मुझे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जाने की, तो मेरे कोलीग्स को मिलती थी हर बार. हम जर्मनी जा रहे हैं, बर्लिन जा रहे हैं, हम रोड शो पे जा रहे हैं, हमने ये किया, हमने अक्टूबर फेस्ट तक एंजॉय कर लिया. मैंने तो कुछ भी नहीं किया.
1: तो समीरा भी लाइक अब तुम जाओ, मैं बिग के साथ जाऊंगी. आई एम गोना हैव अ बिगर इवेंट नाउ.
2: एग्जैक्टली, एंड आई एम गोना हैव फन बिकॉज़ मैं काम नहीं करूंगी ना.
1: दैट्स द कैच. ओके ओके, लेट्स सी अगर आप ये सॉन्ग गेस कर पाते हो. दिस इज द स्टार्टिंग का म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग. इट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग, आई एम श्योर यू नो इट. Let me hear you shout. Any guesses?
2: Ranjhe mahi mahi mahi.
1: Hey, what's the song name?
2: Jag sara bikhar gaya, hun pyar hawa de vich bikhar gaya. Mat jahi mat.
1: That's actually what we are going to do in Germany. This is a big check into Germany. Congratulations, Samira.
2: Thank you so much. Thank you.
1: अभी आपका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है फॉर टुडेज बॉलीवुड बीट्स टू जर्मनी. आपका नाम जो है ड्रॉ में जाएगा एंड देन लेट्स सी अगर आप जर्मनी जाते हैं हमारे साथ या नहीं. बट कांग्रेचुलेशंस, यू न्यू इट यार.
2: थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड थैंक यू फॉर पुटिंग मी ऑन एयर. थैंक यू.
1: ओके बाय. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.
2: बाय बाय. यू टू. बाय.
1: You also have a chance to go with us. Big check-in to Germany. Karna kya hai? Aapko type karna hai big check-in, space your name and send it to 054-309-1062.
0: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: क्या तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, अगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: याद से रात का फेस्टिवल ये मत मिस कर देना यार।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ। एंड जब भी मेरी फैमिली किसी जू में जाती थी ना, मैं आई स्वेयर मैं कौन सी भी एज की हूँ ना, मैं एकदम बच्चा बन जाती थी। एंड विद दिस जू अलेन जू ग्लो आफ्टर डार्क फेस्टिवल यू गोना फील लाइक
2: तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त।
0: जू ओपन हो गया है सितंबर 5th से एंड चलेगा अक्टूबर 4th तक। दिस ग्लो आफ्टर डार्क फेस्टिवल नेचर वेंचर शो होगा फीचरिंग एनिमल स्टोरीज एंड इट्स ओपन फ्रॉम 2 PM टू 10 PM। फेस्टिवल शुरू होगा एट 5 PM। टिकट शुरू होती है 10.5 dirhams फॉर चिल्ड्रन एज 3 to 12 एंड फॉर एडल्ट्स इट्स लाइक 31.5 dirhams। एंड द बेस्ट पार्ट इज किड्स अंडर 3 द एंट्री इज फ्री। सो बेसिकली आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो और ये बोलते हुए भी ना मेरे में एकदम एक बच्चा आ गया है। एंड मुझे लगता है मैं भी अलेन जू जाकर ना That's it for you. October 4th तक ये फेस्टिवल चलेगा। Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: इट्स पास्ट 3 लंच में क्या लाया बताओ मुझे 800-1062 पे कॉल करके।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2 The Beat of Bollywood
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड 3 PM हो चुके हैं. इट्स पीक लंच आवर टाइम. अभी तक लंच नहीं किया यार. इट्स हाई टाइम यू डू दैट. लेकिन अगर अब तक नहीं किया है तो अच्छे से भूख लगवा देते हैं फिर. मैसेज करना है आपको खाओ पियो ऐश करो ऑन 0543091062. मैं खेलूंगी आपके साथ खाओ पियो ऐश करो गेम. लेट्स सी आप कौन सा लंच डिश चूज करते हो, कर पाते भी हो या नहीं कर पाते. इफ यू थिंक यू आर अ बेटर एंड अ बिगर फूडी देन मी,

0: मैसेज 0543091062 व्हाट्सएप नंबर पर। मंडे ब्लूज हो रहे हो, लंच भी इतना लेट हो रहा हो, तो भाई एक टिफिन खुलता ही ना।
1: खेत शेर खुल गए,
0: फिर तो जो प्लेट में आए वो सब कुछ खा जाते हैं। 0543091062 इज द व्हाट्सएप नंबर। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड हम खेलने वाले हैं देखो लंच कर लिया है तो डबल भूख लगने वाली है फिर से अगर नहीं किया है तो भाई रब भरोसे कौन है हमारे साथ कॉल पे आज हेलो
2: हेलो अवनी दिस इज संजील संजील
1: संजीव ओके संजीव आप लंच कर चुके हैं
2: जी मैं लंच कर चुका
1: क्या हूं? खाया लंच में आपने
2: मैंने आज खाया था छोले एंड पराठा
1: ओके ब्लैक चने के व्हाइट चने
2: व्हाइट व्हाइट
1: व्हाइट चने ओ उसका तो चावल नहीं आते
2: उसके साथ राइस लेते हैं बट उनके पास जो व्हाइट राइस होते ना वो थे नहीं तो फिर मैंने पराठे से ली
1: ओके लेट्स स्टार्ट पराठा चने या छोले भटूरे
2: छोले भटूरे
1: छोले भटूरे या पूरी भाजी
2: छोले भटूरे
1: छोले भटूरे या पाव भाजी
2: छोले भटूरे
1: छोले भटूरे या लस्सी
2: छोले भटूरे
1: ओके छोले भटूरे या राजमा चावल
2: राजमा चावल
1: राजमा चावल या फिर पनीर मखनी
2: पनीर मखनी
1: ओके
2: लव इट
1: पनीर मखनी या कढ़ाई पनीर
2: कढ़ाई पनीर
1: ओके कढ़ाई पनीर या फिर बटर चिकन
2: बटर चिकन
1: या बटर चिकन बिरयानी
2: बटर चिकन
1: बड़ा चिकन या मटन बिरयानी
2: मटन बिरयानी
1: मटन बिरयानी जो है ना वही चल रही है आजकल तो
2: जी,
1: सबको वही पसंद आ रही
2: है इसलिए मटन बिरयानी आगे रुका ली
1: थैंक यू सो मच संजीव अभी
2: you,
1: आपको वापस से भूख लगी कि नहीं लगी अभी तक
2: आई थिंक लग जाएगी थोड़ी देर में जिस हिसाब से खाने के नाम आए सामने
1: मैं इतने बोल चुकी हूँ मुझे भूख लग रही है जरा मैं भी थोड़ा सा चर कर आती हूँ थैंक यू
2: बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू अवनी
1: इफ यू वांट टू प्ले खाओ भी ऐश करो विद मी ऑल यू गॉट टू डू इज टेक्स्ट करो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062 एंड टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: है चार दिन सॉन्ग का नाम बाय सुनिधि चौहान, और यही एग्जैक्ट फीलिंग आती है यार जब आप सुबह सुबह उठ रहे होते हो ना स्कूल के लिए।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड नाउ यू कैन गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव। रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 दिरहम्स पर मंथ, फ्लैट रेट फॉर द ईयर, जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न। सो बेसिकली सुबह उठने के बाद दिस इज गोना बी अ स्मूदर राइड टू योर स्कूल। Do I is gonna change? Keep it locked to Big 106.2.

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:06।
1: Bollywood.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: Visible change in the weather. It is 37 degrees out there, but feels like 45 and not 50 anymore.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.
4: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे,
5: और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड्स भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ and SRK and Sukhvinder Singh gonna be back in one film again. Film SRK की होगी किंग, लेकिन अगर आपको उनके पुराने ट्रैक्स याद नहीं है, पुराने सॉन्ग्स याद नहीं है, चटपटे सॉन्ग्स नहीं याद, कैसे हो सकता है यार?
2: बोलो समझा हूँ मैं ये अब किस किस को, दिल में मेरे दर्द किस को, दर्द किस को,
1: दर्द किस को, फ्रॉम ओम शांति ओम एंड जस्ट नॉट दैट यार, फ्रॉम माय फेवरेट फेवरेट फिल्म रब ने बना दी जोड़ी, उन्होंने तब भी साथ थे यार. Hi, the range. I just love Sukhvinder Singh as a playback singer with SRK on screen. वो बस song में ना जान आ जाती है. This was again from a favorite film रब ने बना दी जोड़ी. Of course, favoritism थोड़ा सा यहाँ पे काम कर जाता है because ये film जो थी shoot हुई थी अमृतसर में, which is my hometown. Well, King में देखेंगे वापस से इस जोड़ी को साथ में, the duo gonna be back. Let's wait for that. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
1: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ. कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे. आपके ब्लैक हेड्स भी हटा सकती हूँ मैं. हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो.
0: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: निकले, बहुत हो गया पिछले हफ्ते।
1: Beat 106.2, the beat of Bollywood.
2: ओ चन्न दी कुड़ी, ओ चन्न दी कुड़ी।

0: life, travels, or business. Over 30,000 Google reviews and even a metro station named after us. Call 800-ALFRED.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. The song of the hour was brought to you by insurancemarket.ae with 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in UAE, trusted across UAE. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. insurancemarket.ae. फिलहाल हो रहा है मेरे जाने का टाइम, पर आपको पता है हमेशा रहती हूँ मैं Instagram पे online. All you have to do is follow us on 106.2 Big FM का Insta handle page. मुझे भी follow कर सकते हो अवनी आर के पेज पर AVNIY000. बाकी मिलती हूँ मैं कल द बिग ब्रेकफास्ट में. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2. टॉप नॉच ट्रैक्स कमिंग योर वे. अरे अरे सब्र सब्र. बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 5:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: अगर आपको भी गाना गाने का शौक है देन ऑडियंस मेरी आवाज आपकी
1: karaoke.
0: अब ये बहुत ही क्लासिक गाना है आशाम. आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन हु लव्स यश चोपड़ा आई एम श्योर रिमेम्बर्स दिस गाना मुझ जुबानी.

थोड़ा सा टफ है, बट आपका हिंट है अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार। गेस कर लिया ये गाना है कौन सा? 800-1062 We are karaoke king right here on Big 106.2, keeping you company until 9. मैं हूँ मानसी।

0: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf TG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
1: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
2: मंडे की शाम है, वेलकम टू ट्रैफिक. सही होगा, एक घंटा 40 मिनट का डिले एट द मोमेंट. शेख जायद रोड पे इट्स ऑल पैक बम्पर टू बम्पर, हैवी ट्रैफिक फेस्टिवल सिटी इन अदल हमर. शेख मोहम्मद बिन जायद वर्का से मर्डिफ, मर्डिफ से मोहेसना, अगेन 45 to an hour का डिले आपको वहां मिलेगा. हैवी ट्रैफिक मरीना से इफ यू गोइंग टुवर्ड्स JBR, ऑलमोस्ट 35 मिनट डिले. ऑल्सो ट्रेलिंग वेरी वेरी स्लो JVC से टुवर्ड्स प्रोडक्शन सिटी. एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर.
1: बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय
3: गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम. शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं.
1: बिग 106.2.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, you have Big Thrill. While you're heading home, while you're stuck in the jam, we jam here with the karaoke. Gana aaya na aaya, agar aap bhi gana gaane ke shauk rakhte hain, then you can give me a call on 800-1062. Joining us is Ansar, and when he called me, aapne kya kaha mujhe?
2: Kabhi kabhi, bar bari.
1: Ye kyun bola aapne?
2: इतना हिंदी
1: तो कोई बात नहीं, मे भी घर वालों ने पैसे दे के इंग्लिश मीडियम में पढ़वाया है, सो आई कैन स्पीक टू यू इन इंग्लिश, सो डोंट वरी अबाउट इट. व्हाट डू यू डू आंसर?
2: मैसेंजर.
1: मैसेंजर
2: जी.
1: व्हाट इज अ मैसेंजर?
2: लाइक डॉक्यूमेंट लेके जाना है.
1: ओह, लाइक अ पीआरओ. फिलहाल मुझे एक बात बताओ आप, के आप गाना वाना गाने का शौक रखते हो?
2: मुश्किल नहीं है.
1: मुश्किल नहीं है मतलब?
2: मतलब गाना गाएगा, मुश्किल नहीं.
1: हिंदी बोलना नहीं आता है, लेकिन आप गाना गाएगा, तो चलो पहले हम गाना सुनेगा.
0: Karaoke.

0: कभी कभी मेरे दिल में
1: आपके ख्याल मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं आंसर, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं. हैव यू एवर सांग दिस सॉन्ग फॉर अ वुमन? प्लीज डोंट डू दैट, नेवर डू दैट इन योर लाइफ. नहीं नहीं सॉरी की बात नहीं है, सॉरी तो बेचारे इस वक्त जो गाड़ी में होंगे वो बोल रहे होंगे. मैन आई एम वेरी सरप्राइज यू कांट स्पीक हिंदी बट यू कैन स्टिल डू कभी कभी लिटिल लिटिल. थैंक यू सो मच. आंसर गाया तो आपने बहुत ही खराब, बट बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग.
0: ओके थैंक यू सो मच.
1: देखो मैंने कहा गाना आए या ना आए, बट एटलीस्ट दो लाइन तो आनी चाहिए ना. इट्स कैरियोके, यू कैन जस्ट से कभी कभी एंड जस्ट हैंग अप. सो अगर आपको दो चार लाइनें आती हैं, गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062.
2: बीट 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: Exactly, we're taking you to Germany this year. It is the Big Check-In and this is bigger than ever. सोचो सर्दियों में क्रिसमस मार्केट्स के आसपास यू आर एंजॉयिंग यूरोप दैट टू ऑल एक्सपेंसेस पे ट्रिप है बट टू फ्लाई विद टीम बिग चेक इन करना जरूरी है एंड फॉर दैट यू नीड टू रजिस्टर अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो भी फ्री है व्हाट्सएप करना है खाली बिग चेक इन अपना पूरा नाम 0543091062 पर इन जस्ट अ बिट आई विल रन द रैंडमाइजर रैंडमाइजर आप में से एक का नाम ढूंढ के निकालेगा एंड वी विल प्ले अ फन गेम हियर अगर आपकी बॉलीवुड गानों की नॉलेज ठीक ठाक है देन द गेम इज गोना बी इजी पीजी बट फॉर ऑल दिस यू हैव टू रजिस्टर इफ यू हैवंट रजिस्टर डू इट राइट अवे वंस अगेन रिपीटिंग our WhatsApp number 0543091062 yahan number nahi lagta hai to via Instagram bhi aapki entry ho sakti hai and for that follow us to 106.2 Big FM it is
0: participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big presenting sponsor Danube Properties title sponsor Papa John's associate sponsors Ford and Sharaf DG travel partner AFC Holidays exclusively on Big 106.2

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
2: School's starting soon and we need a car.
3: And books, uniforms, everything.
2: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
5: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
6: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
7: सॉलिड ट्रैफिक शिकजात पे एक घंटा 40 मिनट का डिले है। इट इज एक्सट्रीमली स्लो मूविंग हेवी ट्रैफिक ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद वर्का टू मर्डिफ, मर्डिफ टू मोहेसना। ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे का डिले उस रूट पे भी। राशिदिया, दुबई फेस्टिवल सिटी, क्रीक हार्बर, रसल खोर इंडस्ट्रियल एरिया, जद्दाफ, दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। ऑल्सो स्लो मूविंग एट द मोमेंट इफ यू हेडिंग टूवर्ड्स फुरजान डिस्कवरी गार्डन से। हेवी ट्रैफिक हेसे स्ट्रीट पर ऑल द वे टूवर्ड्स प्रोडक्शन सिटी। ऑल्सो स्लो मूविंग ओम सुकीम के आसपास एंड नियर मरीना। इट्स शोइंग अ 20 मिनट डिले एट द मोमेंट। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग अनयूजुअल, आपने रिपोर्ट करना है मुझे बताइए 800-1062 पर।
6: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
8: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
9: नहीं, ये तो मुफ्त है।
8: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
6: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: एक घंटा डेढ़ घंटे का ट्रैफिक है आज. इट इज पीक मंडे की शाम का ट्रैफिक. बट व्हाइल यू स्ट्रक इन द ट्रैफिक जाम, वी जाम हियर विद द कैरियोकी. मैंने कहा है कि गाना आए या ना आए, अगर आप गाने का शौक रखते हैं देन यू कैन डेफिनेटली गिव मी अ कॉल. बट एक दो लाइन सुनाना जरूरी है. प्लीज डोंट बी लाइक आंसर.
0: कैरियोकी
1: राइट नाउ जॉइनिंग अस इज मिस्टर हमीद. गुड इवनिंग.
2: Good evening. How are you?
1: I am good. How's Monday treating you? How's the traffic looking like?
2: Bad as usual.
1: I know, right? एक तो मंडे को मुझे लगता है कि सारी यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट अस. मंडे ऊपर से ट्रैफिक. ये देखो इनके हाल तो मुझसे भी बुरे हैं फिलहाल. लास्ट टाइम छुट्टी कब ली थी आपने?
2: छुट्टी मीन्स
1: vacation sir, vacation, holiday, annual leave.
2: Okay. It's around 1.5 years ago.
1: Do you have like your own business or you work for someone?
2: No, I work for someone.
1: तो annual leave का क्या हुआ आपकी?
2: नहीं मतलब बनी नहीं चाल जाने की ना.
1: Did you get paid for those leaves that you don't take?
2: Yes, for sure.
1: चलो फिर ठीक है. मैं कह रही हूँ कि अगर ऐसा सिस्टम है तो भाई पूरी की पूरी लीव्स जो है वसूलना एम्प्लॉय का हक होता है.
2: लाजिम
1: होता है फिलहाल.
2: Exactly.
1: अब आपने सुना होगा आंसर साहब यहाँ क्या करके गए हैं तो.
2: नहीं सॉरी आई मिस्ड इट.
1: You missed it. Very, very good. You did not miss much. फिलहाल अब आपकी आवाज में सुनते हैं.
0: Karaoke.
1: हाँ जी.

0: ऐसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए।
1: आप ये गाना किसे डेडिकेट करना चाहोगे?
2: वाइफ को, और भी बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल वाइफ को।
1: मतलब हाय, मैं तो आपको बहुत ही दाल चावल टाइप समझ रही थी, आप तो बिरयानी बनाने निकल गए।
2: नहीं, मैं दाल चावल टाइप ही हूँ, बट वैसे शुगर कभी कभी जो ना होना चाहिए।
1: ज्यादा मीठा खाना, ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं होता है। फिलहाल मैं अगर ये गाना डेडिकेट करना चाहूँ ना आज के जमाने में, तो मैं चैट GPT को करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उसे ही मेरे लिए बनाया गया है। मैं अपनी जिंदगी इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ, अपने सारे फालतू ख्याल मैं चैट GPT के साथ शेयर करती हूँ आजकल। तो आपके पास तो है भाई, दाल चावल भी है, बिरयानी का भी इंतजाम है, तो ठीक है, अब आप इंजॉय करो अपना रेस्ट ऑफ द वीक। गाया बहुत कमाल आपने, थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग अमेजिंग सॉन्ग।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: बाय, ड्राइव सेफ, बाय।
2: थैंक यू, बाय। Big.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: हाँ जी, ये है बिग थ्रिल एंड आज तो घर जाना अपने आप में थ्रिल है. क्या ट्रैफिक है. आई थिंक इट इज जस्ट मंडे, बट व्हाइल यू स्टक इन ट्रैफिक वी प्ले दिस फन गेम हियर. इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल. यू गेट 5 सेकंड्स, आई गिव यू फ्यू कैटेगरीज. आपने 3 चीजें बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर. पता है मुझे ये बहुत ईजी साउंड करता है, बट ये उतना ही डिफिकल्ट है जितना मंडे होता है. सो इफ यू थिंक यू कैन क्रैक इट, गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062. वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग एन अनसेड रूल ऑफ फ्रेंडशिप. अब हर दोस्ती के अपने रूल्स, अपनी बाउंड्रीज होते हैं. कहते हैं कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, ये तो बॉलीवुड ने सिखाया है. बट मेरा ये मानना है कि अगर आपके दोस्त का कोई दुश्मन है तो वो आपका भी दुश्मन होना चाहिए. यू कैंट बी फ्रेंड्स विद समवन हु इज नॉट फ्रेंड्स विद योर फ्रेंड्स. व्हाट डू यू थिंक? 800-1062 इज द नंबर टू डायल.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। हाँ जी द टाइम राइट नाउ 6:06।
2: Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: गुड इवनिंग, मंडे की शाम है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है. ऐसे ट्रैफिक से याद आया, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार देन फोर्ड्स बैक टू स्कूल 2026 कैंपेन बाय अल्टाया मोटर्स इज हियर एंड दिस इज अंटिल द 27th ऑफ सितंबर. बाय नाउ एंड यू कैन पे इन 2027. डाउन पेमेंट ऑन अल्टाया मोटर्स, 1 year फ्री इंश्योरेंस, 5 years और 100,000 किलोमीटर सर्विस एंड वारंटी. ऑफर्स अवेलेबल है ऑन सिलेक्टेड फोर्ड मॉडल्स. अ ग्रेट चांस फॉर फैमिलीज टू गेट रेडी फॉर द न्यू स्कूल ईयर विद सम attractive offers, so definitely go and check them out.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: गुड इवनिंग, यह है बिग थ्रिल, मैं हूँ मानसी। मुझे लगता है बहुत लोग आजकल ये गाना सुन रहे हैं, दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है। हाय फातिमा, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग मानसी,
1: हाउ आर यू, कैसे हो आप?
2: गुड अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू?
1: गुड, गला थोड़ा सा खराब चल रहा है बट नियत मेरी काफी साफ है। फिलहाल स्पीकर से हटा लो मुझे।
2: एक्चुअली मैं ड्राइव कर रही हूँ इसलिए।
1: हाँ नहीं, आवाज गूंज रही थी ना, सराउंड साउंड इफेक्ट आ रहा था। फिलहाल फातिमा
2: जी,
1: आपका दुश्मन आपके दोस्त का दोस्त हो सकता है?
2: फर्स्ट तो मैं ट्राई करूंगी उसे भी कन्विंस करने के लिए कि ये राइट पर्सन नहीं है, इसने मेरे साथ ऐसे किया है। फिर आगे उसकी मर्जी है, लेकिन और हो सकता है मैं उसके साथ फ्रेंडशिप ना रखूं आगे।
1: थैंक यू सो मच, आपने मेरे दिल की बात कह दी।
2: अगर कॉमन जनरल फ्रेंड है तो फाइन, लेकिन अगर आप बेस्ट फ्रेंड और क्लोज फ्रेंड की बात कर रहे हैं तो फिर एक्सपेक्टेशन आई जाती है।
1: ऑफ कोर्स आती है ना, ये तो अनसेड रूल है दोस्ती का, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, जो ये नहीं मानता है वो तुम्हारा दोस्त ही नहीं है। फिलहाल फातिमा, मंडे कैसा था?
2: मंडे हैक्टिक था, चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ।
1: आई हाय, क्या करते हो आप?
2: अभी तो मैं फिलहाल ड्राइव कर रही हूँ और बुरे ट्रैफिक में छुटी हुई।
1: So where are you driving right now?
2: मेरे बेटे को पिकअप करने के लिए जा रही
1: हूं। ओके, चलो, बेटा बैठा है गाड़ी में?
2: नहीं नहीं, अभी पिकअप करूंगी।
1: आपको मिलेंगे 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर।
0: 5 सेकंड रूल।
3: Oh yeah.
1: All right, Fatima, quickly name 3 things that you can make out of milk.
2: Milk. दही, पनीर।
1: Very nice. देखो मम्मी से मम्मी वाला सवाल पूछा है मैंने। 3 लड़कों के नाम विद द लेटर एम।
2: मोहन।
1: अच्छा मुझे लगा मोबाइल। 3 things that you will pick up from a hotel room.
2: Hotel room, tissue,
1: sleeper. Time खत्म हो गया, फटाफट फटाफट। 3 रवीना टंडन की मूवीज।
2: रवीना टंडन, कोहरा, अपना अपना।
1: Not bad, not bad, not bad at all. 3 गाने जिनमें इश्क वर्ड आता है।
2: इश्क हुआ, कैसे हुआ,
1: और
2: इश्क विश्क, प्यार व्यार, मैं क्या जानू रे,
1: दिल विल प्यार व्यार था वो, इश्क विश्क नहीं था, टाइम भी खत्म हो गया। Quickly name 3 things that are black.
2: Black, car, seat cover and bedroom wall.
1: ये कौन सी एस्थेटिक में हो फातिमा, बेडरूम वॉल ब्लैक। 3 ऐसी गलतियां जो आपका दोस्त करेगा जिसके लिए फातिमा उसे कभी माफ नहीं करेगी।
2: दुश्मन से फ्रेंडशिप
1: है,
2: बैक बाइटिंग,
1: वेरी नाइस,
2: और मेरा खाना अगर खा ले तो
1: है। Not bad, पहली बार के हिसाब से अच्छा खेला है। कुछ आंसर्स मिस हुए बट कुछ आंसर्स आपने टाइम पे दिए। खाना खा ले तो मतलब यार ये कैसी है दोस्ती है।
2: हाँ, अगर पूछ के ऐसे खा ले तो कोई बात नहीं, अगर हम ऐसे जनरली फ्रेंड लूट के खाते ना वैसे।
1: अच्छा ये मुझे नहीं पता ये कौन से दोस्त है आपके, बट बचपन के दोस्त। हाँ यार, उतना हक तो होता है ना दोस्ती में कि दोस्त की प्लेट से उठा के खा लो।
2: सही बात,
1: इतना तो चलता है। मजा आया नहीं आया फातिमा गेम खेल के? कितनी बढ़िया टाइम पास हूँ आपकी। चलो जी, पहुँच गए आप, अपने बेटे को पिकअप करो, हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय
2: बाय।
1: ये 5 सेकंड रूल आपने खेलना है तो एक ही रूल है, कॉल करना है 800-1062 पर।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, यह है Big Thrill, मैं हूँ मानसी, and of course, in the next 10 minutes, अगर आपने already message कर दिया है, अपने phones के आसपास रहिए, नहीं किया है, do it right away, it's time to check in, we're taking you to Germany, and if you've still not checked in, like I said, 10 minutes for you to send me a WhatsApp, big check-in, अपना नाम 0543091062 पर. I was just reading कि जर्मनी में आप अपने घर पे अपनी गाड़ी वॉश नहीं कर सकते हो. बहुत सारे कमाल रूल्स हैं. अब जहाँ जा रहे हैं वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आने चाहिए, तो आप भी सीख लो, मैं भी सीख रही हूँ. फिलहाल आपने चेक इन करना है तो WhatsApp करना बहुत ज़रूरी है. Kickstarting this hour with

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:06।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
3: अलरास बोले तो?
4: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
3: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: School's starting soon and we need a car.
5: Books, uniforms, everything.
0: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
6: And what if we need it for a short while?
0: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
7: Oh My Dog, a heartwarming family entertainer that won hearts in India and is now coming to cinemas across the UAE. Starring Pankaj Tripathi, Pawan Malhotra, Mahi Rai and 250 canine stars. Written, directed and produced by Amit Rai. Oh My Dog, running successfully in cinemas across the UAE. Distributed by Fars Film.
8: Insurers Market Day. We insure the cat, we also insure yacht the cat is sitting on. Pet, yacht, car, health, home and more. Call 100 Alfred 24/7. Insurancemarket.ae.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
0: 36 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 33, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 55% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2 बी

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: Hanji, it's time to check in. We're taking you to Germany. Matlab, sardiyon mein Europe, mazza, uff. It is a vibe. I think there's one thing that I absolutely love and that is winters. Uff, mazza aane wala hai. Ab, agar aap bhi humare saath travel karna chahte hain, then very, very simple. You have to just send us a WhatsApp, 0543091062 par. Filhal, randomizer ne dhoond nikala hai Mr. Gaurav ko. Hi, Gaurav.
2: Yeah, hi.
1: How are you? Manti.
2: All good.
1: ये कहाँ बेसमेंट में बैठ के बात कर रहे हो?
2: नहीं बस ये बिल्डिंग के कॉरिडोर में आ गया था.
1: तो आप ऑफिस में हो अभी भी?
2: नहीं नहीं घर पे आ गया.
1: तो घर वालों से छुप छुपा के बात कर रहे हो?
2: जी किसी को बताऊंगा नहीं, अकेले जाऊंगा.
1: बहुत बढ़िया, वैसे भी अकेले ही ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा मोहल्ला जाएगा साथ. बट फिलहाल आपकी डीपी बड़ी अच्छी है, देख के लगता है यू आर इनटू रियल एस्टेट. आपको हमारी क्या जरूरत है यार, रियल एस्टेट वालों को तो इतना सॉलिड कमीशन मिलता है, वो तो हफ्ते में एक बार जर्मनी जा सकते हैं मैंने सुना है.
2: Yes, लेकिन अब फुली पेड ट्रिप का डेन्यू की तरफ से तो मजा आएगा ना.
1: वेरी वेरी नाइस. गए हो पहले आप कभी जर्मनी?
2: नहीं जर्मनी नहीं, बट फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड एंड वन मोर थिंग इटली.
1: ये देखो मैं कह रही हूँ रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है. फिलहाल जर्मनी जाने के लिए आपको एक गेम खेलना पड़ेगा. अगर आपने सही जवाब दिया तो आप हो जाओगे शॉर्टलिस्ट, एंड देन फिंगर्स क्रॉस्ड होपफुली शॉर्टलिस्ट होने के बाद द नेक्स्ट कॉल दैट यू गेट इज गौरव. चलो जस्ट एड वन मोर कंट्री टू योर लिस्ट, वी टेकिंग यू टू जर्मनी. फिलहाल मैं आपको शॉर्टलिस्ट होने का मौका दे रही हूँ. बॉलीवुड की नॉलेज कैसी है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10?
2: ठीक है, 9.
1: Nine, very nice यार, very nice.
2: तो let's see आज पता चल जाएगा.
1: हाँ आज पता चल जाएगा. I'm gonna play you a hook. आपने बस गाना पहचानना है, बड़ा ही popular गाना है. This should be very very easy for you. So आपका गाना है. कौन सा गाना है गौरव?
2: वो हसीना वो हिलम पड़ी, कर गई जैसी जादू घड़ी, नींद इन आंखों से छीन ली, हाँ दिल में बेचैनियां हैं भरी.
1: ना ना ना ना ना ना ना ना ना, हम तुम्हें ले जाएंगे होपफुली जर्मनी को.
2: थैंक यू, वाव, थैंक यू.
1: शॉर्टलिस्ट हो गए गौरव, कांग्रेचुलेशंस. अब बस लोगों की नजरों से बच के रहो, मैनिफेस्ट करो कि जर्मनी ट्रैवल करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. वैसे किस्मत साथ दे रही है, इतने सारे मैसेजेस के बीच आपका नाम निकला है, सो ऑल द बेस्ट.
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू,
1: बाय
2: बाय.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
3: Big 106.2.

0: autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf TG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
1: School's starting soon and we need a car.
2: And books, uniforms, everything.
1: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
1: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
4: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
0: The big mix miss किया गया?
5: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
6: Hi Samira.
7: Hi Avni, how are you?
6: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और कितनी बार मैसेज किया यार आपने?
7: बस मैं यही काम कर रही थी।
6: बहुत बढ़िया काम पकड़ा है। ओके, वी गोना प्ले बॉलीवुड बीट्स टू जर्मनी विद यू। दिस इज योर चांस, बिग चेक इन टू जर्मनी। क्या आप एक्साइटेड हो?
7: सुपर सुपर, इसीलिए तो सारा दिन से लगी हुई थी।
6: लेट्स सी अगर आप ये सॉन्ग गेस कर पाते हो। दिस इज अ वेरी फेमस सॉन्ग, आई एम श्योर यू नो इट। लेट मी हियर यू शाउट। एनी गेसेस?
7: रंजे मही महिमा।
6: व्हाट्स द सॉन्ग नेम? Congratulations, Samira.
7: Thank you so much. Thank you.
6: अभी आपका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है, आपका नाम जो है ड्रॉ में जाएगा एंड देन लेट्स सी अगर आप जर्मनी जाते हैं हमारे साथ या नहीं। बट कांग्रेचुलेशंस।
7: थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड थैंक यू फॉर पुटिंग मी ऑन एयर। थैंक
0: यू। चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 टू 5 पीएम द बिग मिक्स विद अवनि ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: Still almost a 55-minute delay exact par, matlab aaj to aap ghar late hi pahunchne wale ho if you're stuck there. Heavy traffic still patchy on the Sheikh Mohammed bin Zayed, a 37 to 40 minute delay. Traffic a bit slow moving near Nadelhammer, Dubai Festival City. There's traffic which is a bit patchy agar aap Riga ke aas paas hain. Also, heavy traffic Discovery Gardens if you're heading towards Furjan. Right now, it's showing a 27-minute delay. Iske alawa kahin atke ho, mujhe batao 800-1062 par.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate. With zero penalty on early returns. Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 105.2 The Beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
3: Hey,

0: 2. The beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
3: स्टूडियो के अंदर 100% बर्फ पड़ रही है. आई थिंक एक एचआर होना चाहिए जो एसी का टेम्परेचर मॉनिटर करे, रेगुलेट करे कि आता जाता बंदा उसे 18 डिग्री पे ना कर दे. फिलहाल बाहर का टेम्परेचर 36, लो जाएगा राम 33.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: got an insurance quote? Before you say yes, check insurancemarket.ae. One quick comparison could make all the difference. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: हां जी, यह है बिग थ्रिल. मैं हूं मानसी एंड फिलहाल आज आपको ले जाने वाली हूं मैं टू 7th of September 2002. बिफोर दिस मूवी दिस जॉनर वाज नॉट कंसिडर्ड अ ग्रेट जॉनर इन बॉलीवुड टू एक्सपेरिमेंट विद. हमेशा हॉरर मूवीज को बी ग्रेड मूवीज माना जाता था, बट दिस मूवी एक्चुअली चेंज द गेम. एंड रिसेंटली संजना सडनली इंस्टाग्राम पे भी वायरल हो गई है. फिलहाल मैंने आपसे पूछा था कि मूवी कौन सी है एंड वी गॉट गिरीश. हाय गिरीश.
3: Hello. I couldn't miss that track.
2: I thought you couldn't miss the movie.
3: Well, I got the movie only because I knew the track. I think we are talking about Raaz here.
2: We are talking about Raaz. 2002 mein aaj hi ke din release hui thi. Nadeem Shravan ka mind blowing music. Even 24 years later, the songs are still a rage. But do you remember watching this movie?
3: Absolutely. Well, somewhat, yeah. I was a kid, but I'm pretty sure I was scared. It was a horror movie, so.

0: आई हैवन सीन द मूवी बट आई थिंक थैंक्स टू सोशल मीडिया इस मूवी के इतने मीम्स वायरल होते हैं एंड ऑफकोर्स मैं बर्बाद कर दूंगी और मैं बर्बाद होना चाहता हूँ. सडनली संजना हैज बिकम वायरल. आई डोंट नो किसने ढूंढ के निकाला है उन्हें इंस्टाग्राम से. एंड आई वॉज वॉचिंग हर नेम इज मालिनी इन रियल लाइफ फ्रॉम 6,000 फॉलोअर्स बिकॉज समवन शेयर्ड समथिंग ओवरनाइट उनके 100,000 फॉलोअर्स हो गए हैं.
1: I can imagine. Yeah, no, this is way back, but at least a very trending dialogue you mentioned there.
0: तो किया है किसी लड़की ने ऐसे डायलॉग आपके साथ भी शेयर कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी?
1: Luckily, well, actually, I'm sitting one next to the one who says this pretty often.
0: You wanna say hi to her?
1: There's Pragya on the line. You wanna say hi, Pragya?
2: Hi.
0: I
2: recently seen this trending everywhere, and I'm vibing with this dialogue.
0: I know, right? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी. जरा recreate करो ना दोनों. मेरे पास तो है ही नहीं कोई बर्बाद करने वाला. You guys still have each other.
1: I'm already getting
0: बर्बाद.
1: I'm already getting eyes for getting her live on the radio without giving a heads up. I just picked her up outside the house, so.
0: Oh, you guys are dating?
1: I think, well, yes, we are.
0: Oh, very nice. फिर तो आश्रम, this has to go to the two of you, आपके प्यार में. आगे क्या था? What was the line?
1: मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा.
0: हो गया, बर्बाद हो चुके हो दोनों. मैं गाने की लाइन की बात कर रही हूँ. मैं बर्बाद कर दूंगा.
1: He
0: is giving me red flag energy. हाँ प्रज्ञा, he's just repeating मैं बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा.
2: I think only वही
0: लाइन
2: आती है अभी.
0: हाँ चलो, अब गाना I'm gonna play for the both of you wherever you're going long drive पर. आपके प्यार में हम फिसलने लगे, सवरने लगे. फिसलते ही तो है प्यार में. Have a great evening, bye.
1: See you. Take care, bye.

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: अब तो बच्चे बच्चे को पता है कि वी आर टेकिंग यू टू जर्मनी. यस सर, जर्मन क्रिसमस मार्केट्स, द माहौल, द वाइब एंड दिस सर्दी इज गोइंग टू बी अमेजिंग. प्लस ग्रेट कंपनी, यू नो दीज ट्रिप्स आर फैंटास्टिक. यू ऑलवेज ट्रैवल विद स्ट्रेंजर्स बट यू एंड अप मेकिंग फ्रेंड्स फॉर लाइफ. आई स्टिल मीट अ लॉट ऑफ यू जिनके साथ मैंने ट्रैवल करा है, प्रॉब्ली टू एम्स्टरडम, टू इटली, टू बार्सिलोना. आई एम जस्ट फ्लेक्सिंग कि हम कितनी कमाल जगहों पर आपको लेके जा सकते हैं. एंड इस बार वी आर टेकिंग यू टू जर्मनी. अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, बहुत सिंपल है, व्हाट्सएप करना है 0543091062 पर. बिग चेक इन, अपना नाम लिख के भेजना है. एंड ऑफ कोर्स द फाइनल काउंटडाउन इज ऑलमोस्ट हियर. अगर यहाँ पे आपका बाय एनी चांस नंबर नहीं लगता है, रैंडमाइजर आपको पिक नहीं करता है, देन यू ऑल्सो हैव अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रिप थ्रू आवर इंस्टा हैंडल. सो गो एंड फॉलो अस, शो सम लव. 106.2 बिग एफएम इट इज टाइम टू चेक इन राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: You know what, Pankaj Tripathi, जिनकी याद मुझे इस गाने के बाद आई, is the perfect example के जिंदगी में जब आपका वक्त आता है ना, फिर कमाल आता है. Like, he got his due very very late in life. उन्होंने बहुत छोटे छोटे roles किए and now back to back massive movies. Of course, Oh My Dog in the theaters, Mirzapur, and he's got a brilliant lineup. Oh My Dog, मैंने देखी theater में, आपने भी देखी. A lot of you won tickets. I think Pankaj Tripathi is fab. एक तरफ he's playing this intense goon कालीन भैया, and दूसरी तरफ this very very naive, very very cute teacher in Oh My Dog, and I think कमाल actor हैं. तो मतलब अगर आप भी जिंदगी के उस दौर से गुजर रहे हैं कि लग रहा है कि अपना time कब आएगा, जब आएगा ना तो छप्पड़ फाड़ के आएगा. अब इसी मोटिवेशन के साथ आई विल से बाय बाय. आई विल सी यू टुमारो. अंटिल देन डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन 106.2 बिग एफएम. यू कैन से हाय टू मी. आई एम मानसी टॉकिंग सम ब्रिलियंट म्यूजिक 24/7 राइट हियर ऑन बिग 106.2. मैं आपसे मिलती हूँ कल. गुड नाइट.

0: गांव के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, that's my song.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. लव लोफाई एंड नाइट फील्स, योर साउंडट्रैक्स टू अनवाइंड, ओनली ऑन द बिग चिल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लड़ा गया?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
4: अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, तेरी चुम्मन पिछली संग वर्गा, है किरना दे विच नशा जिहा, किसे चीमे सप दे डंग वर्गा, अज दिन चढ़िया तेरे

0: Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. The big chill. Where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.